गल के सुनो सोने ओ, जान भी दियो गुस्सा तकोगे के मारी सुटोगे बल्ले वे बल्ले।